0: बलवान सेनावादी, बलवान सेनावादी मंगर दियो, मंगर दियो ये नाकु सजाती नहीं की रातु इन लूसो वालो, हम तेरे प्रभु से लो यक्षो वाल।
1: वेला, कोवेस में लो यक्षो, ओ, तभी कोई की माँ में बो पुत्रा को पर बोयो मोनो बोए।
0: Prokomen arang misbaik tanganku menemani Senopati. Tuntutan aku.
1: Belayak. Kados pundi menikah Wamandaraka.
2: Noningi. Punten dalam sewu penembak. Sampian dalam sak menika mboten perlu bingung ing penggalih. Lajeng tumulya mancing panepen malih Kanjeng Ratu Kidul kadhawuhan sepisan malih. Ngoyak lampahipun Swelayaksa menika penembah.
1: Oh, inggih, inggih, wo, inggih. Sampun, sampun.